अड़या लोक मारी देताने वे जोशी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे छोटी उम्रे अखियां लाइयां लगे रोग अवले मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले तेरे तीर ही जर दे सजना तेरे तीर ही जर दे सजना असी अपने सीने खा बैठे तू की दर्द न जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे, तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

मामे मासियां पुआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। मामे मासियां पुआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई पटोले।

मोहब्बत हो गई मिट्टी मेरी माँ। जो मिट्टी नाल पांडा बनदा तू मिट्टी दा पूरा। कदे मान करी ना किसे चीज दा रहना सदा अधूरा। तू

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना।

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लद

0: जब जब थिरकते पांव धरती पर, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे। सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।
1: कमल दास जी तो बाद हूँ असि थानू पटियाला विखे डॉक्टर देवेंद्र कौर जी नाल मिलवाने जा रहे हैं। देवेंद्र कौर जी जेडे कि संगीत दे अध्यापक वजों सेवा मुक्त हो चुके ने ते साडियां महफलां दे विच आंदे ने ते साडे श्रोतियां दा मन परचौंदे ने। कला मन ही नहीं परचौंदे, उन्हां दे दिलो दिमाग ते उन्हां दियां कवितावां जिहड़ियां ओ छा जांदियां ने ते हर वार दी तरह इस वार भी ओ साडी काम महफल दे विच अपनी एक नवी रचना लेके हाजिर हो रहे ने। देवेंद्र कौर जी थोड़ा स्वागत है।
2: सब नू मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर देवेंद्र कौर अज जो कविता थोड़े सामने पेश करन लगी हाँ, उसका सिरलेख है किसान दी खुदकुशी। किसान दी खुदकुशी। अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर कत्ल होइयां आसा हजारां। अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर कत्ल हुईयां आसां हजारां। अज फिर क्यों औखा होया जीवना, अज फिर क्यों सौखा होया मरना। बोझ बन गया साडे दिलां ते, सवालिया निशान शासन दी हिक ते। किन्ना दर्द सहा होना है उसने, किन्ना दिल च रोया होना है उसने। किन्ने दिन दहशत विच कट्टे, किन्ने दिन दुविधा दी भेटे। सौखा हुंदा कदे कोई मरना, सोचे कदे उस दे तनाह दा। दिन रात वो सहम गया होना है, माँ प्यो अगे टह गया होना है। धी पुत्तां दे फर्ज करके चेते, पत्नी दा सोच दिल दहल गया होना है। साडे लई इक खबर जो बन गई, साडे लई इक खबर जो बन गई, कमर उसदे टब्बर दी बन गई। किन्ने वैण पए होणगे, किन्ने वैण पए होणगे, मां बापू बच्चे कुरलाए होणगे। उसदी जदों कहानी खत्म हुई है, उसदी जदों कहानी खत्म हुई है, टब्बर दे दुखां दी कहानी शुरू हुई है। अन्नदाता अपनी जान दे गया, अन्नदाता अपनी जान दे गया, मुल्क दी हिक ते सवाल छड़ गया। अन्नदाता अपनी जान दे गया, मुल्क दी हिक ते सवाल छड़ गया। मुक गई किसानी जे किसे मुल्क उत्ते, मुक गई किसानी जे किसे मुल्क उत्ते, समझो उस मुल्क दे भाग फिर सुत्ते, समझो उस मुल्क दे भाग फिर सुत्ते। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत थोड़े सारे।

तेरिया किस काम दितिया ने आजा। इल्म पढ़िया इल्म पढ़िया ते अमल न किता हो। तेरिया किस काम कितिया बाता।

0: गई रूटे रीटे बुक माही चा दी बंदी गई। थैंक यू सो मच जींदे वास्ते। हेलो
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी, थैंक यू हर बार दी तरह जी।
0: ओके
1: जी दोस्तों, ऐसा जी
0: ओके
1: मोहम्मद जी बख्शी जी जुड़े सन अपने नाल दुबई तो, थोड़ा जहा नैट दी शायद प्रॉब्लम सी उन्होंने वालों, आवाज़ थोड़ी जी हो रही सी डिस्टर्ब, पर फिर भी सुनने योग सी। लो फिर दोस्तों, इस दे नाल ही मैनू तो आ गया सोमवार को मिलने के बाद ये होगी मुलाकात, तो जुड़ते हैं फिर नवा नवेला प्रोग्राम लैके सैटरडे संडे कल नू जरा समझ जी संक्षमी हो गए हाजिर महफल मित्रां दी लैके प्रोग्राम, तो प्रोग्रामा नू सपोर्ट करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का धन्यवाद है। अपने हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधु जी, सिकंदर सिंह ओजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, मान सिंह सैनी साहब, बलवीर सिंह सैनी साहब का शुक्रिया ते धन्यवाद है। लो फिर दोस्तों, हैव ए नाइस वीकेंड सब नू, ते रखड़ी वाला दिन भी मुबारक होवे, ते हसते वसदे रहो, खुशियां विच खेड़े लगे रहन, ते सोमवार को मिलन के वादे दिन मुलाकात होगी भारतीय समा 9:30 बजे, सत बद घट बोल के हो गुस्ताखी माफ, ते सोमवार को मिलन के वादे दिन होगी फिर तो मुलाकात। सत श्री अकाल दोस्तों।